माफिलू सेन लिखित शशधर मुखर्जी निर्मित आणि सुबोध मुखर्जी दिग्दर्शित सिनेमा होता मुनीम जी. जीवन के सफर मेरा ही, संगीतकार अर्थात एस डी वर्मन,

0: आप भी गाइए ना। देखिए उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताओ। पामा पधा पधा सपा, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए।
1: दिल की उमंगे हैं जवान,
0: बहुत अच्छी,
1: रंग में डूबा है समा,
0: वाह वाह वाह।

0: है जवान, गाइए ना एक बार और।
1: दिल की उमंगे है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: बाकी दिल की कसर है। तू है मेरा चचा मैं भतीजा तेरा, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा।
1: नौकेतन का पुढचा सिनेमा होता मकान नंबर 44 म्हणजे हाऊस नंबर 44। दिग्दर्शक होते एम के बर्मन, निर्माता देवानंद, नायिका कल्पना कार्तिक, संगीत नेहमीप्रमाणे एस डी बर्मन व गाणे नेहमीप्रमाणेच एस डी बर्मन असल्यामुळे आणि नौकेतनचा सिनेमा म्हणजे गाणे श्रवणीय होतेच। फैली हुई है सपनों की बाहें आजा चल।

0: इतने गौर से क्या देख रही है?
1: लहरें।
0: लहरें? लहरों में से क्या बात है?
1: कभी कभी इंसान के दिल में भी इसी तरह हलचल मच जाती है।
0: कोई ना कोई वजह जरूर होती होगी।
1: शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था।
0: क्यों?
1: अरे मैं तो लेट हो गई।
0: कहाँ जाना है?
1: आपको मालूम हो जाएगा।
0: आपकी हर बात मेरे लिए उलझन सी बनती जा रही है।
1: थोड़ी देर में कम से कम ये उलझन तो सुलझ जाएगी।

मुकेश जी को हम लोग मुकेश भैया कहते थे। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा और शांत था। उनके गले में एक दर्द था और बड़ा भक्ति भाव था जो आज तक लोगों के कानों में गूंज रहा है।

नाथलू सेन लिखित, शशधर मुखर्जी निर्मित आणि सुबोध मुखर्जी दिग्दर्शित सिनेमा होता मुनीम जी। जीवन के सफर मेरा ही, संगीतकार अर्थात एस डी वर्मन,

0: इतने गौर से क्या देख रही है?
1: लहरें।
0: लहरें? लहरों में से क्या बात है?
1: कभी कभी इंसान के दिल में भी इसी तरह हलचल मच जाती है।
0: कोई ना कोई वजह जरूर होती होगी।
1: शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था।
0: क्यों?
1: अरे मैं तो लेट हो गई।
0: कहाँ जाना है?
1: आपको मालूम हो जाएगा।
0: आपसी हर बात मेरे लिए उलझन सी बनती जा रही है।
1: थोड़ी देर में कम से कम ये उलझन तो सुलझ जाएगी।

जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं,

बहुत दिनों तक माल उड़ाया, उल्लू हमें बनाया। चुपके चुपके गप गपा गप, क्या